रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।

इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे किनारे पे आके।

तेरे होते हुए भी आज मेरा प्यार मुझसे जुदा है। मैं क्यों और कैसे मानूं, मैं कैसे कहूं तू खुदा है।

बस यही तो किया था कि हम जरा हौसला मंद हुए, फिर जिंदगी के दरवाजे क्यों हमारे लिए ही बंद हुए।

पैर थकेंगे आंसू बहेंगे, जिंदगी में किसको मिला आराम है, न सोच सफर अभी कितना है, बस चलते रहना तेरा काम है।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्दी।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ है ये दिल की बात साहिल के साथ। ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

कश्मीर सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, ये एक खूबसूरत एहसास है, एक ख्वाब है जो आंखों से नहीं दिल से देखा जाता है। ये एक ऐसी सरजमीन है जहां की हवाएं भी नगमे गाती है, बहते दरिया भी शायरी सुनाते हैं और हर एक मौसम एक नई तस्वीर तख्लीक करता है। ये है कश्मीर, ये है जन्नत बेनजीर। कश्मीर की रूह को समझना हो तो यहाँ की शायरी को महसूस करना होगा। यहाँ की शायरी में इबादत का एहसास है, मोहब्बत का जज्बा है और जिंदगी जीने का सलीका है। यहाँ की आवाज शायरों के कलम से हर पल फजाओं में गूंजती रहती है। यहाँ की शायरी सिर्फ सुनाई नहीं देती है, महसूस होती है, दिल में उतरती है और एक इंसान को खुद से मिलाती है। अगर शायरी कश्मीर की जान है तो मौसीकी इसकी धड़कन है। कितने ही दिल है जो संतूर की आवाज पे धड़कते हैं, जो रनाब की आवाज सुनते ही झूमने लगते हैं और जो गुलकारों की खूबसूरत आवाज में एक पुरसुकून एहसास महसूस करते हैं। कश्मीर के हर सुर में एक कहानी है, कहानी है बदलते मौसमों की, कहानी है मोहब्बत की, कहानी है आने वाले कल की उम्मीद की। यह है कश्मीर और ये सब एहसास जिंदा है यहां की मौसीकी से। कश्मीर का फन और फनकारी सब्र, महारत और बेपना मोहब्बत की अलामत है और ये एक ऐसा एहसास है जो रहती दुनिया तक जिंदा हो जावेद रहेगा। पश्मीना शालों की बारीकी से लेकर पेपर माशी की नक्शो निगारी तक हर तख्लीक एक नई कहानी सुनाती है। मेहनत से तराशी गई लकड़ी और फितरत से मुतासिर मुसव्वरी, ये सिर्फ फनपारे नहीं है बल्कि एक कश्मीर की लाजवाल सकाफत और विरासत की अक्कासी करती है। कश्मीर सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि ये एक जीती जागती तख्लीक है। अगर सही मानों में खुद को कश्मीर के रंग में रंगना होगा तो यहाँ की शायरी, मौसीकी और फनपारों को देखिए तो आपको यकीनन महसूस होगा कि कश्मीर सतरंगा है।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपुरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
3: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर, कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 एफएम एंड वी केयर फॉर यू।
4: चुनार बीट्स विद

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चना 90.4 FM में हूँ जॉक्स, और आप सुन रहे हैं हर दिल की धड़कन रेडियो चना पर शो मस्तार शो दोस्तों, फॉलो शेयर सब्सक्राइब करें रेडियो चनार के ऑफिशियल हैंडल्स को फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम एक्स पर, साथ ही साथ डाउनलोड करें हमारा ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर ऐप स्टोर से। ऐप डाउनलोड करते ही आप हमें सुन पाएंगे लाइव दुनिया के किसी भी कोने में करके फरमाइश मंगाए, और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन से धड़काते रहो।

0: 是 Zeus，
1: 光来啊
2: ，Zeus。
3: What is frequency of North Kashmir? आप enjoy कर रहे हैं मस्तार शो, what's up?रेडियो चुनाव हर दिल की धड़कन और इस धड़कन को धड़काते हैं तो मेरी जान और जोरों से धड़काने के लिए और अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए 8899 9 0 4 9 0 4 नंबर यस इज 8888 9 0 4 9 0 4 आप कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज और अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं हर दिल की धड़कन को और जोर से धड़काए और इंस्टाग्राम पर आए इंस्टाग्राम पर डीएम करें Zeus the bad boy of radio आप मेरी आईडी सर्च कर सकते हैं और इंस्टा हैंडल पर डीएम करके भी शो में हो सकते हैं शामिल व्हाट्सएप शो और व्हाट्सएप शो के डेरो सेगमेंट्स में से जी हां सबसे पहला और सबसे उम्दा सबसे आला लाला आज का वेदर अपडेट
4: रेडियो चिनार रेडियो रेडियो चिनार वेदर अपडेट वेदर अपडेट
3: ये ब्रदर क्या होगा आज का वेदर आइए बताते हैं आपको क्योंकि हर दिन वेदर कुछ नया जरूर लेकर आता है अति रोद अति ताप अति चासा वुजमल तो गगराई कशीर से दपा कशीर मन से साय जाय तो मगर इस कोताई
4: रेडियो चिनार
3: वैसे मौसम की जो ये करवटें हैं ये बदलती रहती है और आज ऊंट किस करवट बैठेगा ब्रदर आइए बताते हैं आपको आज का वेदर
4: रेडियो चिनार रेडियो रेडियो
3: चिनार आज मोस्टली सनी होने वाला है दिन बट बीच बीच में बादल सूरज को घेरने की कोशिश करेंगे और शाम होते होते हल्की फुल्की हवाएं भी महसूस अपना एहसास करा सकती हैं
4: रेडियो रेडियो चिनार वेदर अपडेट
3: बेटर है कि कुछ रेन कवर वगैरह साथ लेकर चले इफ इट्स मैंडेटरी क्योंकि अगर हम बात करें इस वेदर अपडेट की तो ये जो वेदर है ना वेदर कुछ अलग ही करवटे जो है कर रहा है अदर ही करवटे जो है बदल रहा है तो बादलों के साथ साथ हवाएं और हवाओं के साथ साथ अभी की बताएं तो मॉडरेट है यूवी इंडेक्स 73% ह्यूमिडिटी 0 माइल्स पर आवर की स्पीड है विंड की और विजिबिलिटी है 4 किलोमीटर्स और इससे क्या पता चलता है इससे ये पता चलता है कि थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है क्योंकि वेदर हेजी होने के बावजूद आप जो है इफ यू आर ड्राइविंग राइट नो तो हो सकता है नज़र धुंधला सकती है तो प्लीज कीप योर कॉन्सेंट्रेशन ऑन द विंडशील्ड और डिस्ट्रैक्शंस वगैरह जो है उन्हें टोटली अवॉइड करें 5:21 पर हुआ आज का

सनराइज 7:40 पर होगा आज का सनसेट। और स्ट्रीकन से हर दिल की धड़कन मैं हूँ और जिस आप बने रहें सुनते रहें हर दिल की धड़कन को धड़काते रहें।

0: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे है,
1: व्हाट्सएप पे
0: तभी
2: वायरल ऑन शो व्हाट्सएप।
1: दोस्तों रेडियो चुनार की हॉट फ्रीक्वेंसी पर वायरल ऑन व्हाट्सएप, क्योंकि जो वायरल होता है व्हाट्सएप पर आ ही जाता है।

इंडियन आर्मी की तरफ से प्रोवाइड करी जा रही, जी हाँ, आर्मी HPCL कश्मीर सुपर 50 मेड। और अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दूं, इट्स अ चांस कि अपने माइंडसेट को आप रिसेट कर सके। इट्स कॉम्प्लीमेंट्री 12 मंथ्स फ्री रेजिडेंशियल कोचिंग फॉर IIT JEE नीट और बी डिफरेंट कोर्सेज जिनके रिलेटेड यहां पर फ्री कोचिंग कराई जाती है कॉम्प्लीमेंट्री 12 मंथ्स के लिए। इसका जो एग्जाम डेट है दैट इज थर्सडे 25 जून 2026 सुबह 9 बजे और लोकेशन जो है दैट सेक्टर 4 आर्मी कंटोनमेंट हफ्चनार। एक सिंपल सा सिलेक्शन प्रोसेस जो आपको मैंडेटरी है पास करना। देखिए, रिटन एग्जाम होता है, 1 घंटा ड्यूरेशन होती है, उसमें पूछे जाते हैं या बताए जाते हैं सवाल और शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट जो है उनकी स्क्रीनिंग की जाती है और पर्सनल इंटरव्यू किया जाता है। जी हाँ, दिलो जान लगाकर वहां पर आपको पढ़ाया जाता है। फैकल्टी जो है प्रोवाइड की जाती है आर्मी की तरफ से। वही अगर हम देखें तो 9th बैच है इस साल का। अगर आप चाहते हैं कि आप भी बुल्स आई हिट करे तो इट इज समथिंग यू शुड डू फॉर योरसेल्फ बिकॉज दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योरसेल्फ। आर्मी HPCL सुपर 50 श्रीनगर, यहां पर जाकर आप अपने आप को रजिस्टर करवाए या रजिस्टर करवाने के लिए www.niedo.in पर लॉग इन करें। जैसे कि मैंने कहा, फ्री रेजिडेंशियल कोचिंग है जहां पर जेंडर्स का खास ख्याल रखा जाता है, बच्चों को फैसिलिटीज दी जाती है। रेजिडेंशियल कोचिंग है तो जाहिर सी बात है वहां पर रूम्स वगैरह अवेलेबल है और वही जो बच्चियां रहती है उनके लिए अलग से अकोमोडेशन की जाती है, खाने पीने का ख्याल रखा जाता है और ये सब फ्री रहता है। जी हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे का मुस्तकबिल जो है, फ्यूचर जो है, सिक्योर हो जाए, देन आर्मी HPCL कश्मीर सुपर 50 इज द डोर यू मस्ट नॉक। रेडियो चैनल 90.4 FM। जी हाँ, बढ़ेगा इंडिया जब पढ़ेगा इंडिया।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरफ।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिरार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन।
4: हर दिल की धड़कन रेडियो चिरार 90.4 एफएम शो व्हाट्सएप शो में आज का कोट ऑफ द डे। आज का कोट कहता है व्हेन इन डाउट लुक इंटेलिजेंट। हर स्प्रीक्वेंसी रेडियो चैनल 90.4 एफएम से डायरेक्ट धड़काते रहो।

0: Jesus. कौन आया?
1: बी व्हाट्सएप पे
2: जस्ट

और इस फ्रीक्वेंसी नॉर्थ कश्मीर रेडियो चुनाव 90.4 एफएम अब एंजॉय कर रहे हैं मजेदार शो व्हाट्सएप शो और व्हाट्सएप शो में हमारे साथ जुड़े हैं बिलाल। लिखते हैं बिलाल के मैसेज कर रहा हूँ ये बताने के लिए रेडियो चुनाव उमदा है, अच्छा लगता है। सर मैं रेडियो चुनाव को फॉलो कर रहा हूँ काफी टाइम से, अगर याद है तो बहुत पहले भी मैसेज किया करता था मैं। देखिए दोस्त हम नहीं बोलते, हमारी यादाश्त जो है गणी चौकी से बाबू, और हमें याद है कि आपने हमारा भरपूर साथ निभाया। थैंक यू सो मच बिलाल वंस अगेन हमसे जुड़ने के लिए और इस प्यार के लिए, और यूं ही प्यार बांटते रहे। शजिया हमारे साथ जुड़ी है, लिख रही है कि एक स्टूडेंट हूँ और रेडियो चुनाव से बहुत कुछ जानने को मिलता है। थैंक यू सो मच शजिया, गॉड ब्लेस यू। 8899-0494 तो इतने की उपन कथा इस बात नहीं। और बहुत सारे दोस्त जो शो में सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजते हैं उन्हें बता दूं कि म्यूजिक ऑन डिमांड हमारा एक सेगमेंट जहां पर आप अपने रिक्वेस्ट सॉन्ग सुन सकते हैं, उनकी फरमाइश कर सकते हैं। सो ऐसे जब आप मैसेज करते हैं देन यू आर लाइक भैया शामिल नहीं करते मैसेज, तो भैया सॉन्ग रिक्वेस्ट कैसे प्ले करके ऐसा कैसे करती साहब। तो सॉन्ग रिक्वेस्ट वगैरह के लिए म्यूजिक ऑन डिमांड, देखिए रेडियो चैनल पर अगर आप सुन रहे हैं ना तो आपको सब चीज़ों के लिए एक अलग अलग स्लॉट मिलेगा। तो बस ये है कि दिल से सुने, दिल से धड़का है हर दिल की धड़कन रेडियो चैनल। व्हाट्सएप शो और व्हाट्सएप शो में मुझे पता है आपको आज के टॉपिक का इंतजार होगा। आज हम बात करने वाले हैं लंग्स ऑफ द वर्ल्ड अमेज़न फॉरेस्ट की। जी हाँ, अमेज़न फॉरेस्ट रेन फॉरेस्ट, और वही अगर हम कहें तो दुनिया के सबसे बड़े जंगलों में से एक। और अमेज़न फॉरेस्ट क्या है, कैसा है, कौन सी स्पीशीज है वहाँ, कितना घना कितना खूंखार है ये अमेज़न फॉरेस्ट, सब बताएंगे, सब जानकारी हम आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन पहले चुनर चुनरी वाला गाना, और कहीं नहीं जाना।

क्योंकि दिल है दीवाना, मौसम है सुहाना, बस इसके बाद राइम नहीं होगा। पते की बात यह है कि 8899904 इज द नंबर। अगर आप भी एडवेंचर लवर है, जंगलों वगैरह में जाते रहते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते रहते हैं, तो हमें ज़रूर बताएं, हम तक बात ज़रूर पहुँचाएं। नया रेडियो चुनाव की हॉट फ्रीक्वेंसी पर जॉक जूस के साथ मजेदार शो, व्हाट्सएप से रहो, दिल का दे रहो।

0: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

दोस्तों रेडियो चैनल की हॉट फ्रीक्वेंसी पर आप एंजॉय कर रहे हैं मजेदार शो व्हाट्सअप और व्हाट्सअप शो में अगली पेशकश टिकटॉक्स एंड बॉलीवुड न्यूज़। जी हाँ, बॉलीवुड का एक तड़कता फड़कता अपडेट और साथ ही साथ टेक की दुनिया से भी अपडेट्स आप तक पहुंचाए जाएंगे। जरा सा इंतजार, देते रहें प्यार और दिल की धड़कन को धड़काते रहो मेरे यार। रेडियो चैनल 90.4 FM, मैं हूं जॉक्स।

Jeremy. Chinar Beats with Harsh Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: bunch of zoos.
1: Kona ya.
2: Bollywood news.
3: Så Radio Channel 90.4 FM show was a showcase segment Bollywood News. जी हां, सलमान खान एक बार फिर से चर्चा में। पेपराजी को तो हड़का दिया, लेकिन सलमान खान उलझ गए हैं एक लीगल इशू में। जी हां, काला हिरन, जो कि बताया जाता है जून में रिलीज होने वाली है मूवी, और इसमें सेम वही इंसिडेंट फिल्माइज या रिकॉर्ड किया गया या स्क्रिप्ट किया गया है जो कि हम साथ साथ है कि शूट पर जोधपुर में सलमान खान को बारी पड़ गया था। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ काला हिरन केस की, ब्लैक बक, जो कि बताया जाता है सलमान खान ने शिकार किया और शिकारी खुद शिकार हो गया। अब इसी इंसिडेंट पर बनाई जा रही एक मूवी काला हिरन, जिसको लेकर सलमान खान ने खासा एतराज जताया है और बताया है कि इसका जो प्रमोशंस वगैरह है, इवन रिलीज भी बंद कर देनी चाहिए। अब आपको क्या लगता है ये कॉन्ट्रोवर्सी किस तरफ जाकर रुकेगी, वो तो हम भी देखेंगे। अभी फिलहाल रेडियो चुनार की आर्टिस्ट फ्रीक्वेंसी पर जॉक्स के साथ मजेदार शो वॉट्सअप मेरी जान से रहो।

0: कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
1: पहचाना।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: Jesus. Kom nou ja.
1: So friends, wakt aa chala hai kya uske liye aap se ijazat li jaye, but I'm leaving here with RJ Diva, jo ki aapko join karegi kuch hi der mein, aur RJ Diva ke sath aap sunenge show Chinar Beats. जी हाँ, बीट्स ऑन रिपीट आप एंजॉय करने वाले हैं, बस जरा सा इंतजार। रेडियो चुनार की हार्ट फ्रीक्वेंसी पर सिरे धड़काते रहो मेरे यार। और मेरी मुलाकात कल आपसे होगी 9:30 से 12 बजे तक, और शो रहेगा मस्तार शो वो सब। सो माय डियर फ्रेंड्स, टिल वी मीट अगेन, कीप योर हेड्स हाई एंड वॉक टॉल, एंड रिमेंबर दैट आई लव यू ऑल। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, खुशबाश, मासलामा।

जी हाँ, मैंने तो अपना बना लिया इस वक्त को, क्योंकि ये वक्त मेरा ही नहीं आपका भी है। 91.4 रेडियो चुनार ब्रागा हो चुका है शो चुनार बीट्स का, फुल ऑन माय वेंट्रा बीट्स और

Chinar Beats with Harshi Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

बीट्स ऑन रिपीट शो चुनार बीट्स आप एंजॉय कर रहे हैं ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम। ढेर सारी बातें, मस्ती मजाक, फन, एंटरटेनमेंट के अलावा ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है हमेशा की तरह। आल्सो आई तो सुपर एक्साइटेड। वो कहते हैं ना कि मैं अकेले नहीं हूँ, आप मेरे साथ होते हैं और इस साथ को पूरा करते हैं आप। बिकॉज ये एक ऐसा वक्त होता है ना जिससे मैं, मुझे लगता है कि जी हाँ, बहुत सारी बातें होंगी और इन बातों में मेरी पूरी वाइबर ट्राइब भी होगी। तो क्या है आपके हालात, जज्बात, ख्यालात और क्या है वो बेहतरीन से भी बेहतरीन सी थॉट जो आपने सुबह सुबह आपको लगा, वो बेहतरीन शुरुआत हुई एंड दिन काफ़ी सही जा रहा है, या कोई ऐसा अनयूजुअल सा एक्सपीरियंस आप जब ऑफिस जाते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आप सच में दिल से चाहते हैं कि पहुँचे वहाँ तक जहाँ तक पहुँचती है रेडियो चुनार की आवाज़। तो बस नंबर है वो जो आपको हमें जोड़ के रखता है, इट्स 8899904। आप कॉल, टेक्स, व्हाट्सएप करके शो में शामिल हो सकते हैं, बता सकते हैं क्या है आपकी वो जज्बात जो हमने छुपाई हैं और आपको लगता है कि सच में उन जज्बातों पे थोड़ा सा हम भी गौर फरमाएं। ये बेफिक्र तो आपको रहने की ज़रूरत है क्योंकि हर एक इंफॉर्मेशन हो, एंटरटेनमेंट हो, यानी कि चटपटी मसालेदार खबरें सब तक आप तक

पहुंचती है। सो मैं यहाँ हूँ, आप भी जुड़ जाइए, शो का ऐसा बन जाइए, क्योंकि आप सुन रहे हैं हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनाव 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

बीट्स ऑन रिपीट शो चुनार बीट्स आप एंजॉय कर रहे हो ऑन योर रेडियो चुनार 90.4 एफएम. डी सारी बातें हो रही हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल हाईवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. जी हाँ, जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू आप आराम से आ सकते जा सकते हैं. बोथ साइड से ट्रैफिक जो है अलो किया जा रहा है एंड ट्रैफिक जो है इट्स बीइंग स्मूथ ऑन बोथ ऑफ द साइड्स. एंड स्पेशली अगर हम बात करें कि हैवी मोटर व्हीकल्स, लाइट मोटर व्हीकल्स दोनों को ही अलो किया जा रहा है. बस वी हैव टू बी थोड़ा सा केयरफुल अबाउट आर सेल्फ कि हमारे पास जो गाइडलाइंस हमें दी गई है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हमें उन्हें फॉलो करना है, ड्राइविंग SOPs को फॉलो करना है, सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलानी है क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी सेफ्टी के लिए है. जी हाँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है अगर हम इन्हें फॉलो करेंगे तो हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने का सबूत देंगे. हमें पता होगा कि इन चीज़ों से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या चेंज आ सकती है हमारी सोसाइटी में. देखिए, हम जब करते हैं ना तो हमारे साथ 10 और लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं एंड ट्रस्ट मी, एक सही इन्फ्लुएंस सही होता है सोसाइटी के लिए. और फिलहाल के लिए अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं, तो ज़रूरी है कि सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए. और गलत जगह पे ओवरटेक करना बनता ही नहीं है, इससे हर बड़ी में हमेशा गड़बड़ी हो जाती है. सो हीरो बनिए, जीरो नहीं. और हीरो बनने के लिए हमने हीरो वाला काम ही करना पड़ता है, अपना और अपनों की देखभाल करनी पड़ती है. शो चुनार बीट्स, आप सुन रहे हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनार 91.4 FM. मैं हूं दीवा.

हाय, मैं हूँ आरजे ज़ूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

शो चुनाव और बीट्स आप सुन रहे हैं ढेर सारी बातें और बैक टू बैक सॉन्ग्स आप एंजॉय करते हैं ओनली और रेडियो चुनाव 91.4 एफएम बिकॉज इट फ्री म्यूजिक का वादा देता है रेडियो चुनाव पर पूरा सबसे ज़्यादा। We are talking about एक बहुत ही खास दिन है आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है एंड इट्स वर्ल्ड बाइसिकल डे एंड व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग बाइसिकल डे सो वी हैव टू रिकॉग्नाइज द बाइसिकल एज सिंपल अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब ये चीज़ मैं नहीं कह रही हूँ, इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस इन 2018 एंड द डे ऑफ हाइलाइटेड हाउ बाइसिकल यानी कि साइकिलिंग जो है काफ़ी कम गंबात है हमारी क्लाइमेट चेंज के लिए इम्प्रूव करता है पब्लिक हेल्थ और इट फॉस्टर्स सोशल इक्वालिटी ग्लोबली। आई बिलीव कि बाइसिकल एक काफ़ी हमें लगता है कि आज के ज़माने में कि अच्छे किसान हद तक के अगर हम साइकिल पे कहीं जाएंगे, बट मुझे लगता है कि पहले अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा साइकिल जो है यूज़ किया जाने वाला ट्रांसपोर्ट था, लोग सबसे ज़्यादा साइकिल को ही चुनते थे, फिट रहते थे, क्लाइमेट का अगर हम देखें तो कोई बुरा असर नहीं पड़ता था। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ ख़त्म हो गई, बट ये चीज़ होनी चाहिए। वी हैव टू रिकॉग्नाइज बाइसिकल से कितनी सारी चीज़ें, या हम देखें तो ये कितना इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ये किस हद तक अफोर्डेबल है और सस्टेनेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इट एंड व्हाट्स द थीम उसके बारे में भी बात करेंगे। आप भी शो का हिस्सा बन जाइए और अगर आपके पास साइकिल है आप उसे किस हद तक अटैच है, क्योंकि बचपन की मेमोरीज होती है, अभी भी अगर आप साइकिल चलाते हैं मुझे बताइए, शो का हिस्सा बन जाइए 8899049904 टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए, शो टू नॉर्वीज का हिस्सा बन जाइए।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

देखिए बातें तो नहीं, बट अपनी फेवरेट ट्रैक्स की जो रिक्वेस्ट है वो आप भेज सकते हैं, यानी कि 8899904904 पर आपने कॉल करनी, टेक्स्ट व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, शो का हिस्सा बन सकते हैं और शो म्यूजिक ऑन डिमांड में अपनी रिक्वेस्ट पूरी कर सकते हैं। शो चुनार बीट्स पर आज बात हो रही थी वर्ल्ड बाइसिकल डे के बारे में, एंड हमने बात की कि कितने सारे बेनिफिट्स है बाइसिकल की और कैसे हमारा इन्वायरमेंट सस्टेन हो जाता है, सस्टेनेबिलिटी की ओर बढ़ जाता है। लेकिन बाइसिकल मीन्स प्रोड्यूस जीरो इमिशन चूजिंग बाइक और कार, आई मीन इट्स टोटली वर्थ डिसीजन वो टेकिंग डिसीजन। एंड आई मीन कि अभी भी अगर किसी के पास साइकिल है और वो चलाते हैं और वो चूज़ करते हैं इस चीज़ को, तो वो एक तो एफोर्डेबल सस्टेनेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं। बाइसिकल एक काफ़ी ज़्यादा सिंपल ट्रांसपोर्ट है जो हम यूज़ कर सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं और बहुत ही हमें चीप रेट पर मिलेगा। एंड फिलहाल के लिए आप अपनी फेवरेट ट्रैक्स की रिक्वेस्ट पूरी कर सकते हैं 8899904904 पर, टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए, शो का हिस्सा बन जाए, शो म्यूजिक ऑन डिमांड का हिस्सा बन जाएगा।

शो म्यूजिक ऑन डिमांड का लास्ट ट्रैक है ये। इशरत की आवाज थी ये कि मेरी आवाज़ वहाँ वहाँ तक पहुँचे, जहाँ जहाँ तक पहुँचते रेडियो चनार की आवाज़। बट हाँ, उनकी जो बातें हैं वो ये है कि आपकी आवाज़ है और आपकी आवाज़ हम पहुँचाते हर जगह पे, खासकर जहाँ जहाँ तक रेडियो चनार की आवाज़ पहुँचती है। स्पेशली ये कि हम रेडियो चनार सुनते हैं और बहुत अच्छा लगता है, और जब आप कॉल पिक करते हैं, रिक्वेस्ट हमारी पूरी करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। हमें भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं शो का हिस्सा बनते हैं। और आपकी फरमाइश पे ये लास्ट ट्रैक और अब जो भी रिक्वेस्ट पेंडिंग है वो हम कल आपके लिए प्ले करेंगे स्टार्टिंग में ही शो में। आप अगर और भी गाने सुनना चाहते हैं तो बराबर कल 1:30 बजे जुड़िएगा हमारे साथ शो म्यूज़िक ऑन डिमांड। शो का हिस्सा बन जाइए कल, लेकिन बराबर 1:30 बजे। जी हाँ, क्योंकि प्यार इतना ज़्यादा है कि इंसान हड़बड़ी में गड़बड़ी हो ही जाती है। सो फिलहाल के लिए कोई गड़बड़ी नहीं करनी है। शो ख़त्म हो चुका है और शो रेडियो गर्ल स्टार्ट होने जा रहा है। और असरा आपके साथ जुड़ेंगे बराबर 2 बजे। आप सुनते रहे रेडियो चुनाव 90.4 FM। ये है हर दिल की धड़कन।

Chinar Beats with Harsha Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

हाय, मैं हूँ आरजे दीवा और आप सुन रहे हैं रेडियो चनार 90.4 FM। The game is on. Tune into Radio Chennai 90.4 FM. Game on with RJ Asra. Only on Radio Chennai 90.4 FM. 4 FM.

0: hours with you.
1: Definitely, we also need more hours with you. और अभी जैसे कि Radio Girl चल रहा है, दीबा, मैं, दोनों यहाँ बैठे हैं, आप सबसे बात कर रहे हैं about our friends and specially जो हमारी सहेलियाँ हैं, companions हैं. और जैसे कि आज का topic हमारा girls girl था, एक ऐसी लड़की या ऐसी लड़कियाँ जो बाकी लड़कियों को support करती हैं, hype करती हैं, और जो कुछ भी stereotypes हैं कि औरत ही दुश्मन है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात की कि कुछ ऐसा नहीं होता, बल्कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो एक दूसरे को हाइप करती हैं. एंड दैट इज न्यू टर्म बाय जेन ज़ीज़, दैट इज गर्ल्स गर्ल. Definitely we need more girls like this, जो actually girls girl हो और एक दूसरे को support करे, hype करे. And moreover, हमारे society में ऐसे बहुत सारे discriminations होते ही हैं, चाहे school हो, college हो, workplace हो, जहाँ पर लड़कियों को एक अलग discriminate किया जाता है, अलग रखा जाता है, या internalized misogyny की वजह से लोग समझ नहीं पाते कि कैसे इक्वल राइट्स देना काफ़ी आसान है और उन्हें भी वो चीज़ें करनी चाहिए. पर देखिए, ऐसे मुश्किल वक्त कमांड हो सकते, और जब भी ऐसे मुश्किल वक्त होते हैं तो अपने ही काम आते हैं. यानी कि जो लड़कियां होती हैं वो आपस में एक दूसरे को अगर हाइप करें तो कभी कभी जो इतनी बड़ी मुश्किलें होती हैं वो हल हो जाती हैं. एंड मोर ओवर लड़कियों का ऐसा नेचर ही होता है, वी आर लिटिल मोर इमोशनल देन मैन. एंड हमें काफ़ी अच्छा लगता है जब कोई इमोशनली हमें पैम्पर करे, हाइप करे, ओ माय गॉड योर आउटफिट लुक्स सो गुड, बस ये एक सेंटेंस आपका दिन बना देता है. तो आप भी जुड़ जाइए, बन जाइए शो का हिस्सा, और आप भी बताइए कि आपकी जिंदगी में गर्ल्स गर्ल कौन है. 8899904904 इज नंबर, यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप में, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM, एंड शो है रेडियो गर्ल्स.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

मैं कौन हूँ आपको तो समझ आ गया होगा, क्योंकि ढाई बजते ही वेंसडे और सैटरडे को सिर्फ, बाकी दिन तो 2 बजे मैं आ जाती हूँ हंगामा के साथ। पर आज एक स्पेशल शो होता है रेडियो गर्ल्स, जिसमें हमें काफ़ी मज़ा आता है। मैं पर्सनली बात करूँ तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है, मैं थक गई, बट ये बात ज़रूरी है कि हंगामा शुरू हो गया है। एंड रेडियो गर्ल्स टू हंगामा का ये ट्रांजिशन ड्रामा, करंट अफेयर्स, क्या बजिंग है और लाइफ का ऐसा फिलोसफिकल टच साथ लाता है जिसमें हंगामा और ड्रामा और असरा साथ आती है।

0: मैं वो स्टार शो शुरू हो चुका है हंगामा और क्या क्या होता है यहाँ वो तो मैंने बता दिया, पर एक्चुअली में अपडेट्स के साथ साथ ट्रेंडिंग रील्स मीम्स के बारे में बात होती है, इसके अलावा जो भी टॉपिक होता है उसके बारे में बात करते हैं। और आते आते प्ले होता है कुछ खास पिटारे से।
1: मैं अलबेली घूमू अकेली, कोई पहेली हूँ मैं,
0: दिल की बात छीन ली करिश्मा कपूर ने। और गाने का नाम मैं अलबेली है और मूवी का नाम जुबैदा है। एंड दिस इज वन ऑफ द ब्यूटिफुल सॉन्ग दैट हैज बीन डन बाय करिश्मा कपूर।

0: हंगामा आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
0: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो चुनार। और शो हंगामा अभी अभी कुछ देर पहले शुरू हुआ है, तो चलिए बात करते हैं फ्रेश की। क्या है ट्रेंडिंग, कौन सी रील, कौन सी मीम लोग देख रहे हैं, लोग पोस्ट करना पसंद कर रहे हैं, रीपोस्ट हो रहे हैं, और फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब पे लोग लिप सिंकिंग एंड वीडियोस बना रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया है ये ऐसी जगह, भाई कुछ भी ट्रेंड कर जाता है। बस बात यह है कि वाइब होनी चाहिए। और आज एक ट्रैक ऐसा है जिसपे इतनी क्यूट सी, इतनी प्यारी रील्स बन रही हैं, भाई क्या बोलूँ। सबसे पहले तो लड़कियों की बात करते हैं, अभी कोई गाना नहीं आया होता है उस पर ट्रांजिशंस।

मेकअप रील्स एंड गेट रेडी विद मी एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. और लड़कों की बात करें वो भी नीचे नहीं है, बस डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं एकदम इस गाने पर. बिल्कुल इनकी माशूका का जो नजरों का तीर है जनाब, वो कभी चूकता नहीं है और हमारी भी बात कभी ऐसी उधर इधर नहीं जाती, बराबर टारगेट पे जाती है. और हमारा टारगेट आप है. 8899904904 इज नंबर, यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप और अपनी बातें हम तक पहुंचाइए. और एंड आई विल रिपीट द नंबर, 8899904904 इज नंबर. आप इंजॉय कीजिए बैक टू बैक ट्रैक्स में, बस यूं कहिए यू वापस आई सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन.

0: आरजे सूज।
1: हेलो, मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय, मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिटार 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
0: वेलकम बैक जी, रेडियो चुनार 90.4 एफएम द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी शो है हंगामा, ड्रामा और अपडेट्स, एंड दिस इज द टाइम फॉर अपडेट्स। स्पेशली रेलवे अपडेट्स के बारे में बात होगी और कैसे आज की जो भी ट्रेन्स हैं दैट आर शेड्यूल्ड बाय समर टाइम टेबल, और आपको समर टाइम टेबल ईदर या आप अगर किसी रेलवे स्टेशन पे फिजिकली प्रेजेंट हैं तो वहाँ पे बोर्ड लगा होता है, मेक श्योर दैट यू चेक द टाइम टेबल। और अगर आपको ऑनलाइन ज़रूरत है, देखिए आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, कौन जाए कौन देखे, इधर हम उसको फ़ोन करान इस रेलवे मंज आज से या ऑफिसर आज से या पैसेंजर आज हम उनको कॉल करते हैं कि भाई मुझे बताना कि कब शेड्यूल्ड है ट्रेन। बट ये डिपेंडेंसी ख़त्म होने के लिए रेलवे, इंडियन रेलवेज ने एक ऑफिशियल ऐप बनाया है जिसका नाम है रेल वन, एंड यू कैन अवेल ऑल द शेड्यूल्स थ्रू दैट। और ज़रूरी है कि आप अपने रिस्पेक्टिव स्टेशंस पर 10-15 मिनट पहले ही पहुँचे। देखिए ट्रैवल एक ऐसी चीज़ है जो बहुत अनप्रडिक्टेबल होती है। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग थ्रू ट्रेन तो यू नेवर नो कि कौन सी ट्रेन कब डिले हो, एंड यू ऑलमोस्ट यू विल कैच द ट्रेन और पता ही नहीं चलेगा। देखिए सिमरन तो अपनी ज़िंदगी जी ली और वो चलते चलते ट्रेन में चढ़ गई, बट ऐसे होता नहीं है यूजुअली। जब भी ट्रेन लाइक इट स्टार्ट्स टू मूव यू कांट बोर्ड द ट्रेन। इट्स बेटर कि आप अपने रिस्पेक्टिव स्टेशंस पर 10-15 मिनट पहले ही पहुंचे सो दैट कोई अनहोनी ना हो। Enjoy कीजिए back to back tracks only on Radio Sudar 90.4 FM। मैं हूँ अश्रा, शो हंगामा में बस यूं गई और यूं वापस आई।

हाय, मैं हूँ असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो सुनार 90.4 FM. ये है हर दर्द की धड़कन. और जैसे ये हर दिन का एक स्पेसिफिक टॉपिक होता है, खास टॉपिक, खास तरीन टॉपिक जिसके बारे में हम बात करते हैं. और आज हम बात करने जा रहे हैं कोचिंग सेंटर, कोचिंग कल्चर इन कश्मीर. कैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ऑनेस्टली कि जो टेंथ करते हैं एंड देन दे पास आउट टेंथ एंड देन दे थिंक अबाउट कि हमें ज़िंदगी में क्या करना है. और सबसे पहली चीज़ उनके दिमाग में डॉक्टर, इंजीनियर, UPSC, CA और बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं हमारे देश में जो आप ऑप्ट कर सकते हैं एंड यू कैन बी अ गवर्नमेंट ऑफिसर. एंड आज हम उसी के बारे में बात करें क्योंकि कश्मीर में जो हब है ट्यूशन्स का, दैट इज़ परे पूरा, बागा, थैदर पूरा, एंड इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि कैसे ये शुरू हुआ और अभी लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, स्टूडेंट्स इस बारे में क्या सोचते हैं. और ये जो एक रेस है कि गवर्नमेंट जॉब की, क्या हमें एंटरप्रेन्योरशिप पे भी ध्यान देना चाहिए, क्या हम सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तलाश में ना रहें, अपना भी कुछ करें और कश्मीर के बारे में बात करेंगे. तो जुड़ जाइए, बन जाइए शो का हिस्सा. 8899-0494 इज नंबर, यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप. मैं हूं असरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM.

रेडियो दीवा और आप सुन रहे हैं रेडियो चनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: हाय मैं हूँ आरजे सियू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिरार 90.4 FM हर दिल की धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

देखिए, अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो ध्यान से ड्राइव कीजिए, ट्रैफिक एसओपीज़ को फॉलो करना ना भूलें, और आपका प्यार तो हमें चाहिए, विचार भी भेजिए, प्यार भी भेजिए। 8899049 इज नंबर, यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स, व्हाट्सएप। मैं हूं अशरा, शो हंगामा कुछ देर बची है, शो हंगामा में तो जल्दी से ड्रामा क्रिएट कीजिए। 8899049 इज नंबर, आई रिपीट, बन जाइए शो का हिस्सा। मैं हूं अशरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: मैं हूँ आरजे असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM.
1: Come on, baby. Oh, sugar. Now hear me.

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर दिल।

0: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है, और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: Hum hai team Radio Chinar 90.4 FM and we care for you.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

Hey, it's Vedharshi Diva on your radio channel 90.4 FM.

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

Jeremy. Chinar Beats with Harsh Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

beats with Archie Diva on Radio Channel 90.4 FM.

0: कोक स्टूडियो भारत सब्सक्राइब नाउ।
1: खादीनो हजरत मुख्तसर बात साहिबे मसनद सुनो।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, चल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाए, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: पानी पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर, कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम

0: रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चिनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चिनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
2: दिल को
3: करार आ जाए
2: जब भी आए
3: सुहानी शाम,
2: दबी यादें महक जाए
3: जब भी आए
2: सुहानी शाम।
3: सुनिए सुहानी शाम
2: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
3: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: तभी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चनार
2: 90.4
1: FM।
3: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है, और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
0: Hum hai team Radio Chunar 90.4 FM and we care for you.
1: Dil ko
2: karar aa jaye
1: jab bhi aaye
2: suhani shaam.

0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चनार
2: 90.4
1: एफएम।
0: स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले

0: देख सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाए, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।